0: today.
1: Bit of music and more of it. Tonight's Show Classic Hits.
2: क्या आप बेहतर करियर की तलाश में हैं? योग्यता से कहीं अधिक वह नौकरी पाने का वास्तविक मौका जो आप वास्तव में चाहते हैं? AAS ऑस्ट्रेलियाई शैक्षणिक समाधानीय उद्योग प्रशिक्षण और बेहतर कार्य अवसरों के लिए आपका मार्ग है. ऑस्ट्रेलियन एकेडमिक सॉल्यूशंस अनुकूलित समाधान प्रदान करता है. सुरक्षा, निर्माण, यातायात नियंत्रण में व्यवहारिक प्रशिक्षण के साथ और आतिथ्य सत्कार बस कुछ ही नाम है. आइए और CBD में 45 मुरे स्ट्रीट पर लेवल 3 पर हमसे मिलें और आज ही सही कौशल के साथ तेजी से नियुक्ति पाएं.
3: Just search Australian Academic Solutions.
4: Are you still looking for retirement living options?
5: Yes, Barossa Living in Glenorchy is our first choice. Architect designed, low maintenance and designed for real connections.
4: I love the lock and leave lifestyle and no big upkeep.
5: Plus private courtyards, landscape surrounds. It looks beautiful and all level entryways make living easy.
4: I heard the best spots are selling fast.
5: Our future's not going to wait.
4: Don't miss out. Contact Barossa Living at onecare.org.au to buy now.
6: Get ready, Hobart. Here's what's coming up at the Odeon. On the 17th of July, Rock Aria delivers a full tribute to the ELO catalogue. A week later, on July 24th, John Stevens runs through his Noise Works and In Excess years, covering three decades of Australian rock staples. On Saturday, the 3rd of October, Adelaide's own Hindley Street Country Club, bringing the greatest hits of the 70s and 80s back to life. Then Scottish icon Majour arrives on the 13th.